नो उपाशितवानि रुचन्ते ते संगुपसमो सुखो सब्बे सत्ता भरन्ति च मा विंसु।